0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: सिक्स पीएम
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: বন্ধু, তুমি তো বিদেশে লাগে রে। হ্যাঁ দিদি, সেটিকা দুঃখ করে শুরু করার পয়সা কিন্তু চলে না। অলে তো ঘর চালানো সাহারে গাড়ে গে, বিদেশ গে পছি তো এসে দু চার পয়সা কমিয়ে হচ্ছে কি ভালো না দিদি? বিদেশ সাহারেমা কাহ রাম্রো হচ্ছে রা মঞ্জু? অস্তি ভর্খর রাম বাহাদুর কাকাকে ছোরি অঞ্জলিলাই বিদেশ গেছে এক হপ্তা নাই উদ্ধার করে ল্যাক থাকা ছিল তিমলাই? তুমি পনি বিচার গর এই বিচার গর, জানে নি ভয়ে বুঝে মাত্র যাই খাই কে জানে জানে দিদি।
1: रोजगारीको लागि, उच्च शिक्षाको लागि र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जाँदा पनि बेचबिखनमा पर्न सक्ने जोखिम हुन सक्छ। यस्ता जोखिमहरू आउन नदिन सतर्क रहौ र बुझेर मात्र विदेश जाऊ।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
3: नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता। यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19, समुन्द्र साक्य 9861-83-35-34, टेलिफोन 0385-20-43। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै यूआई सम मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मरमत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गारमा चोर बौद्ध सुलुखुम्बु।
4: बाबा, म आज स्कुल जाने मन छैन, आज जाने नि है?
5: सन्चो भएन?
4: होइन, यतिकै जाने मन लागेन।
5: यतिकै पनि हुन्छ?
4: मैले साइन्सको कन्ठै गर्न सकिनँ, सरले कुट्नुहुन्छ।
5: ए, कुरा त्यस्तो थियो? गएर म पनि तिमीसँगै जान्छु। नमस्ते म्याडम, म रिनाको बुवा।
0: नमस्ते, कति टाइमले पाल्नुभयो?
5: आज रिनाले स्कुल जान्न भन्यो, साइन्सको कन्ठ गर्न सकिन अरे, सरले पिट्नुहुन्छ भन्दै थिए।
0: ओहो, हो र, हजुर आएर राम्रो गर्नुभयो। विद्यार्थीलाई कुट्न तर्साउन कहीँ पाइन्छ र? विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक सजाय गरी 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिमाना हुन्छ। म साइन्सको सरलाई सम्झाउँछु, रिना तिमी क्लासमा जाऊ त, सरले केही गर्नुहुन्न।
2: हस् म्याडम। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचित सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका पांच सोलु कुंभू

0: World's number one tire brand.
1: के तपाईं झाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
2: यस्ता समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आजै सम्झनुहोस्।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओपीडी सेवा,
1: विशेषज्ञ ओपीडी सेवा,
2: निशुल्क औषधि वितरण,
1: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
2: फिजियोथेरापी सेवा,
1: अकुपंचर सेवा,
2: योग परामर्श सेवा,
1: क्रियाकल्प सेवा,
2: पूर्वकर्म पञ्चकर्म सेवा,
1: छाड़ सूत्र सेवा,
2: जलौका सेवा,
1: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
2: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
1: विस्तृत जानकारीका लागि
2: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैलीगाउँ काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4110-696, 98514-2463।

0: লাকি। গুড মর্নিং নমস্তিনী নমস্কার সম্পূর্ণ হার্দিক হার্দিক স্বাগত সাথে কার্যক্রম লক্ষ্মীলাই বিগত ভাইক রেডিও সিটমা আজ বিহানী সদা আজি উপস্থিত ভইসকি গাছ প্রাবিধিক মিত্রকো সাথমা ম আওয়াজমা ছু শর্মিলা আর শুনতে পাচ্ছ এই সময়মা পূর্বী নেপালকে পড়ল সামুদায়িক রেডিও সিরাফাম 101.2 মেগাহার্জ কার্যক্রম লক্ষ্মীলাই শুনবে কার্যক্রম লক্ষ্মীকে বিষয় নিয়ে লিড সদা আছে আজ বিহানী নৌপুঞ্জ দেখি যে নৌবাউন্ন সময় রয়েছে তাইসঙ্গে মজাড়ি প্রশ্ন উত্তরক খেল খেলে সবকিছু লাগে তোমাদের ফটাফট ফোন করুন 97649 50 73 লাইন হুদী কার্যক্রম সহযোগিতা জানান হল পকিনি ধীরে জানা সাথী এই সময় আপনি কাম ব্যস্ততা তাই ব্যস্ত অবস্থা রয়ে তাপনি সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তি মস্ত গ্রহণী কার্যক্রম মজার শুনে সাথ দিনহা ভন্ন চাহু কই সাথে টেলিফোন লাইন না স্বাগত গরিনি হল কাহ
1: হ্যালো নমস্কার।
0: হ্যালো নমস্তে নমস্কার হাজুর কাহা বাটো বলি
1: সিন্ধুলি
0: কফিক বাটো কি শুনু আয় ভালো দীপেন্দ্র শুনু আয় ভালো হো হো দীপেন্দ্রজি আমি কি হাল খবর সমুদ্রমা ভিন পো ওহো এটাতির একদম মজাল ঘাম লাগি অলিক ভরে ভরে পানি পড়া জো ঠিক দীপেন্দ্রজি মানে পহিল প্রশ্ন রাখি গম্ভীর শুনলা তাই প্রশ্ন সজিল চীন সরকার সহযোগ তাতো পানি সুখা বন্ধ গ্রাহ কহিলে
1: সন 2019
0: তাইকো এন্সার আই আমি লগে দেশাও আই হ্যাঁ এসকো সহি জবাব হয় একুশ বিক্রমস মধ্য 2079 পোস্ট 5 কতে আই তাইকো লাগি দোস্রো প্রশ্ন গই নিয়ে হালে দোস্রো প্রশ্ন তাইকো লাগি এস্তো কুর্থা জনকপুর জয়নগর সম্ম সঞ্চালন হুনে রেলসেবা পুন উদ্ঘাটন কহিলে ভয় থিও দীপেন্দ্র সিংহ আয় ভিও ভালো ভূমি সেই জবাব দিনে প্রয়াসমা সাথী শুরু তাই আউন চাহুন্নি আমার টেলিফোন লাইন খোলা 97649 50 74 কই সাথে স্বাগত গরিনি হল
1: হাজুর
0: নমস্তে হাজুর নমস্তে নমস্কার হাজুর কাহা বাটো বলি
1: টিউঠান
0: বাটো ঋষিরাম পান্ডে জি বলি ঋষিরামজি লাগি পহিল প্রশ্ন রাখি মনে ধ্যান দিয়ে শুনু হলা তাই প্রশ্ন এস সরকারে দুই জেলা থপ করে সতত জেলা বনাউনে নির্ণয় কহিলে গড়ে থিও ৭৪ সাল ভদৌ 5 গতে তাই দোস্রো প্রশ্ন দেইনি হালে দোস্রো প্রশ্ন রহেকো ছ রাপ্তি অঞ্চলকো পুরানো নাম কি হো আমি ওহো সাথী অলিক সই এন্সার লক গাইসকে পশ্চাতে তাই এন্সার দিয়ে তাইসার লক হচ্ছে অগাড়ি নিয়ে অলিক সোচে বুঝে সই জবাব দিয়ে প্রয়াস করুহলা চাহি পকি তাই সই জবাব দিয়ে অবশ্যই তাই আপনার লক্ষ্মী নম্বর সুরক্ষিত সাথে লক্ষ্মী নম্বর সত্যি ধরে সুরক্ষিত তাই তিনি আপনার বৌদ্ধিক ক্ষমতা বিকাশ সকি সাথী ফোন লাইন না ভিমাকে ফোন ডিসকানেক্ট পুন প্রয়াস করুহলা প্রতিদিন তাই ধীরে খামকে ব্যস্ততা বিশেষ কাম করি খেতবারী কাম করি গরাইসি কাম থেকে ব্যস্ত হলেছি হাম্রো কার্যক্রম লক্ষ্মীলাই অন্তিম সময় শুনে সাথ দিন সকু ভিও কই সাথে টেলিফোন লাইন স্বাগত করুন কাহা বাটো हले हुन्दा हुन्दै उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भएको छ है पुनः प्रयास गर्नुहोला भनेर फेरि पनि मैले तपाईँलाई दोहोर्याउन चाहे कहिले काहीँ गाउँ गाउँमा अलिकति नेटवर्कले पनि हामीलाई धोका दिइरहेको हुन्छ है डाण्डामा अलिकति नेट सही अलिकति तल बेसीतिर नेटवर्क नपर्ने भन्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरू कार्यक्रममा अन्तिमसम्म सुनेर पनि मजाले तपाईँले हामीलाई साथ सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र उनी चाहिँ हामी कार्यक्रम लक्कीको पहिलो अनि छुट्टो विश्रामतिर पहिले सुट्टु विश्राम साथ फेरि पनि कार्यक्रम लुकिलाई लिएर तपाईँको रेडियो सुटमा हामी उपस्थित हुने नै छौ।
2: कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन जनप्रतिनिधिको नजर विनियोजित बजेटको काम र प्रभावकारिता नागरिकको गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तहको विकास र सिद्धि नेचा सोलन गाउँपालिका सोलुखुम्बुको सहकार्यमा उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेचा सोलन हरेक महिनाको पहिलो सोमबार र अन्तिम सोमबार साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सोलु एफएम 101.2 MHz www.soluefm को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ।
3: ए विकास बौद्धतिर कहाँ कुदेको यसरी
4: कलेज खोज्दैछु यार कक्षा 11 को लागि पढाइ र अनुशासन पनि कडा चाहियो अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि उत्तिकै राम्रो भएको ठाउँ हुनु पर्यो नि।
3: अरे यार त्यसो भए त सिद्धे बौद्ध टुसालको केम्स कलेज जाऊ न तिमीले भनेका यी सबै कुरा त्यही त छ नि।
4: हो बौद्ध टुसालमा अवस्थित केप्स कलेजमा कक्षा 11 का लागि साइन्स म्यानेजमेन्ट ल तथा ह्युमानिटिज संकायमा नयाँ भर्ना खोलियो। उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि मैत्री सिकाइमा जोड दिँदै यहाँ अनुभवी दक्ष एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा अध्यापन गराइन्छ। सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप र जहिन्दार विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था।
5: आउनुहोस् केप्स कलेजसँगै आफ्नो उज्जवल भविष्यको जग बसाल्नुहोस्।
3: केप्स कलेज बौद्ध टुसाल
4: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 97125107 97125107
5: सफलताको सही छनौट केप्स कलेज।
2: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र शुष्क ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौ जीवन रक्षा गरौ।
6: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: सवारी साधनको इन्जिन र तेजस रोगोपणी सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरू तपाईँले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरिद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधनको इन्जिन र चेसिसको अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरिद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। उत्तर प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर। बाल बालिकालाई लागु औषध दुरूपयोगबाट बचाउ लागु औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौं बाल बालिकालाई लागु औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौं बाल बालिकाको संगतमा ध्यान दिउ लागु औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिउ बाल बालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौ बाल बालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौ विद्यालयमै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौ बाल बालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौ।
6: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश।
7: हत्तेरीका दिदी यो नयाँ घर बनाउनु कस्तो तनावको काम रहेछ भने बिजुलीको सामान किन्न बजारका चार चारवटा पसल चारे कतै पाइन ओह अब सामान लिन काठमाडौँ नै जानुपर्ने हो कि क्या हो
8: धत बहिनी तिमी पनि कस्तो सोमनामा छौ
7: बिजुलीको सामान लिन काठमाडौँ किन जानु हाम्रै सुलुखुम्बुमा सबै थोक पाइन्छ त
8: ए हो र दिदी
7: कहाँ पाइन्छ म त खोज्दा थाकिसके हौ। ल सुन बहिनी, सुरु दुखकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको शान्ति स्टोर एन्ड सप्लाई छ नि। त्यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण नयाँ सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छन्। बोर्ड, आधुनिक स्विच, वाइरिङका सामान जे खोज्यो त्यही तयार।
9: लौ, नयाँ सामान पनि पाइने, पुरानो सामान पनि मर्मत हुने।
7: यो त ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तै भयो नि दिदी।
10: हजुर, बिजुलीको भरपर्दो सहयात्री शान्ति स्टोर एण्ड सप्लायर्स, सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 5 सल्लेरी सोलु खुम्बु। यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाउनुका साथै नयाँ तथा पुराना सामान मर्मत पनि गरिन्छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू कुलनारायण श्रेष्ठ 97 63 00 57 84 र विवेक श्रेष्ठ 98 62 82 00 00। सुनु दुतकुण्ड नगरपालिका 5 सोलिरी सुनु खुम्बु।
11: उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गरौं। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गरौं। कारोबारमा बिल विशोक लिने र दिने गरौं। कारोबारलाई पारदर्शी बनाऊ। नाफाको उद्देश्य झुटा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना नदेऊ। वस्तु सेवाको मूल्य मात्रा म्याचसकी नीति गुणस्तर यकिन गरी मात्र खरिद बिक्री गरौं। वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं। वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट क्षति पुगे क्षतिपूर्ति मागौं। निष्पक्ष तथा तथ्यपरक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौं। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं।
12: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सुरु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 10 एम बिहानको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

सम्पर्क नंबर 038-520-129 98-43-79-80-86-52 98-24-74-17-18 98-43-43-59-96 र 98-61-23-14-72 अंजी औषधालय सोलो दुत्कुण्ड नगरपालिका पास सल्लेरी सोलुखुम्बु पास नंबर ओडा कार्यालय।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखलढुंगा को मिलन चेतना।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफ रोड का उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भैर
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का अति उपयोगी।
2: हमारा सेवा
3: ओखलढुंगा र खोटांग को दिक्तल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद कर एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दीने
2: ऑनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने।
3: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुंजाई ओखलढुंगा।
2: संपर्क नंबर 0375902222 98528002222 98482030।

0: विज्ञापन बोर्ड।
1: नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलिफोन 0385-20-43। नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-83-13-87 नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै यूआई स मोटर पार्ट एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मरमत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46। नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गारमा झोर बौद्ध सुलुखुम्बु।

0: उज्जवल एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्या फिल्म स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

साथी भाई को गफै गफ कुनै रातको छैन छौटे थोड़ी डुबा छोड़े पशी बनू सवा शेर।

नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड न्यू स्टार कलर ल्याब तथा स्वरामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सोलोदत कुंड नगर पालिक पांच सलेरी स्कूल खुम्बू विगत देखि नई ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कलर ल्याब तथा स्वरामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवाहर का साथ में सब हमारा सेवा प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई करटेशनरी का सामान होलसल मूल्य में पाई दीपिया कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल तार पाई सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवेव मुहाने गीजर गैस चिलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसल मूल्य में बिक्री वितरण हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी तालचा वाल मिक्सर मोनो सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ भने ये सब मरम्मत र गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर कर सलेरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय अटो वर्कशप गैस सिलिंडर गैस सुनो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसल मूल्य में बिक्री नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203089 0385203060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909250 न्यू स्टार कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सलेरी स्कूल खुम्बु

0: टू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Studio time. In studio time.
2: It's 2 PM. We support the budget.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुम्बु
2: आदरणीय श्रोता प्रेम तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्ने एफएम सुन्ने एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीत

0: पक्षीगढ़ में हुने संबंधी सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस को सूचना।
1: विगत 35 वर्षदेखि उच्च शिक्षा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान संचालन और व्यवस्थापन करते आईरिक साथ ही योग्य दक्ष एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा अध्यापन भईरिक सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस में इसी शैक्षिक सत्र 2083 का कक्षा 11 में भर्ना भईरिक सभी इसी सूचना मार्फत जानकारी कराई।
0: भर्ना कार्यक्रम हुने मिति
1: भर्ना म्याद यही फिर 17 गति देखि असार 15 गति सम्म कक्षा संचालन 2083 साल असार 16 गति देखि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने म्याद 2083 साल असोज 20 गति सम्म
0: पढ़ाई हुने समूह अनुरूप
1: कम्प्यूटर साइंस समूह कानून समूह व्यवस्थापन समूह मानविकी समूह शिक्षा शास्त्र समूह
0: कानून समूह में 30 जना र कम्प्यूटर साइंस समूह में 40 जनालाई मात्र भर्ना लिने
1: थप जानकारी को लगी संपर्क नंबर 98-510-1055 98-41-63-53-37 98-42-84-87 में संपर्क कर सकने।
0: उद्धव कुमार शर्मा कैंपस प्रमुख सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस तल्लेरी सोलखुम्बू।

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM दिवसको 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
1: सीधा खुदा प्रश्न विचार जियो रेडियो नेटवर्क अहिले दिवसको 3 बजे
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
1: राष्ट्र को किसान
2: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चेतना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842880300

0: बोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्या फिल्म स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बु
3: तरीका बल्ल बल्ल अपना हाथ में पारे को अरबों को ठक्का फूट किए
4: जरूरी
3: हमी पाए बाटो को ठेक्का अर्को पार्टी आपने में पारे
4: कुहोसियो अर्क को भाग खोजने इस सही ठाव में पुर्व के पर्च मैं रामस
5: बुआ तपहर कस्तो कुरा करते हुए ठेक्का जिसको नाम में पड़े बाटो राम्रो र छिटो बने भैन न विकास का कार्य में किन त्यो पार्टी यो पार्टी भनी राख्नुहुन्छ तपाई समाज का जान्ने बुझ्ने भनौदार को एकलौटी अनि अहंता का कारण हाम्रो गाउँमा विकास नभएको बुझ्नुभयो विकास का कार्यमा राजनीति नगरौ समृद्ध समाज निर्माण को लागि सबै एकजुट हौ अधिकार को दुरूपयोग नगरौ जनहित को लागि सुनो एफएमले तयार पारेको सामाजिक सन्देश

0: चार कलर लैब तथा सोलह मई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस सुनोदित कुंडी नगर पालिक पांच सोलरी स्कूल खुम्बू विगत देखिने ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कलर लैब तथा सोलह मई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवाहर का साथ में सब संग हमारा सेवाहर प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई गई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल में पाई दीपिया कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूबलाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल का तार पाई सीवी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गरिदै आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवन मुहाउने गीजर गैस सिलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झ्याल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी तालछा वाल मिक्सर मुहाउने सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ भने ये सब मरम्मत गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर यति मात्र होइन सल्लेरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशप गैस सिलिंडर गैस सुनो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385209 0385209060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909250 न्यू स्टार कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सल्लेरी स्कूल खुम्बू
1: हाम्रो के दोष सर पक्रिनु भएको सर
2: बाल विवाह गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा थिएन तपाईँहरूलाई के दोष छ भनेर हुन्छ
3: हामी त जन्ती गएका त हौ नि सर
2: त्यही त कुरो बिग्रियो बाल विवाह भएको हुन लागेको कुरा त देखेपछि रोक्नु पर्ने हो नि त उल्टै जन्ती जाने भोज खाने अनि पक्राउ परिन्न त
1: तिनकै बाबुआमालाई पक्रिनु न सर हामीलाई छाडिदिनु
2: तिनका बाबामा पक्राउ परिसक्यो ती त अब 3 महिना जेल बस्छन्
3: तिनलाई पक्रिहाल्नु भएछ अब यसरी बाल विवाह गर्न दिनु सर गाउँ घरमा एक पटकलाई छोडिदिनु सर
2: अब कानूनले त्यसो भन्दैन बाल विवाह गराउने लमीदेखि जन्तीसम्मलाई 1 महिना कैद हुन्छ भनेको छ अब यो थुन्ने र छन्ने काम पुलिसको होइन अदालतले गर्छ चुप लाएर बस्नुहोस्
0: बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी नेपालको जनहितमा जारी सन्देश आफ्ना बाल बालिकालाई उचित समय दिने र उनीहरूसँग घुम्नु हुने बानी बसालौ
4: उनीहरूसँग प्रविधिले ल्याएको सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावहरू बारे छलफल गरौ
0: बाल बालिकालाई उचित शिक्षा संस्कार र समय दिने हामी अभिभावकको दायित्व हो
4: उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याउने क्षमता विकासमा हाम्रो मद्दत आवश्यक पर्छ
0: बाल बालिकाको जिज्ञासु स्वभावलाई झर्केर होइन सकारात्मक सोचका साथ समय दिएर सम्बोधन गरौ
4: माया र सद्भावले मात्र बाल बालिकालाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ
0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

0: बसंत को माया लुहावा चलता, सोलह सत्र को उमेरमा जोवन को नहर चलता, कसे कसे ले ती तो मीठो याद हुए तो दिए के होना है ना। हो ती याद हुए नहीं हम कुछ में रुमान याद आयो
1: आयो।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche Studio FM in studio time.
2: It's 6 p.m. Sajapo Tavaju.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीएनएन.
1: स्टुडियो टाइम इट्स 8 PM रातको 8 बजे
2: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु.

0: Township. Suru FM is studio time.
1: It's 9 PM. Ratko 9 baje. टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलू एफएम सोलू एफएम मा अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाली सदाबहार गीतहरू